कार्यक्रम का आखिरी गाना आप श्रोताओं के नाम जतुका किशनपुर से आलम दिलकर शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज, आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गाना।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम की सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका और आज मेरे साथ हैं मेरी सखी राखी।
1: बहनों स्वीकार कीजिए अपनी सखी राखी का भी नमस्कार। हम जानते हैं कि हमारी सखियों को हमारा इंतजार रहता है, जिस तरह हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं ना निधि।
0: हाँ राखी, तुमने सही कहा। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई, अब लेकर हम हाजिर हैं बहनों के लिए गृहलक्ष्मी। और राखी, हम अपनी सखियों से एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, एक ऐसा धागा जिसके माध्यम से हमारे विचार बहनों तक पहुंचते रहते हैं और हमें भी करीब करीब ये अंदाजा है कि बहनों की पसंद क्या है।
0: बिल्कुल। और राखी, ऐसा लगता है मानो हम उनके मन को पढ़ सकते हैं। सच है ये बात कि कभी कभी बिना शब्दों के ही हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा देते हैं।
1: हाँ निधि, हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार उठते हैं और सबका नजरिया भी एक जैसा नहीं होता। मतभेद होना एक स्वाभाविक सी बात है ना।
0: बिल्कुल। और यही मतभेद लेकिन जब रिश्तों में खटास पैदा करने लगता है, हम एक दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते, सम्मान नहीं करते, तो यह मनभेद का रूप ले लेता है।
1: सही कहा, मतभेद और मनभेद मानवीय संबंधों में आने वाली दो अलग अलग स्थितियां हैं। मतभेद विचारों की भिन्नता है जो कि बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन मनभेद लोगों में दूरी और द्वेष को बढ़ावा देता है।
0: बिल्कुल। और मतभेद तो भाई प्राकृतिक है, यह स्वस्थ चर्चा का आधार हो सकता है। इससे रिश्तों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया हो सकता है। और मतभेद से बल्कि दूसरों के विचारों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं। हाँ, और हम अपने विचारों के ऊपर भी सोच विचार करते हैं।
1: हम मनभेद की बात अगर करें तो ये विचारों के टकराव से पैदा होता है। जब हम दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते, यह अहंकार या द्वेष भी पैदा होता है। हमें लगता है कि हमेशा हम ही सही हैं।
0: हाँ, और इससे संबंधों पर नकारात्मक असर तो पड़ता ही है, दूरियां बढ़ जाती हैं, आपसी संवाद भी खत्म होने लगता है। मनभेद तब भी होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, हम उसके विचार का सम्मान कर ही नहीं पाते और हम पहले से ही ये तय कर लेते हैं कि अगर उसने कुछ कहा है तो ये जरूर ही गलत होगा।
1: विचारों का अलग होना या मतभेद होना प्रगति और समझदारी का हिस्सा है, लेकिन जब यह मतभेद अहंकार में बदल जाता है तो यह मनभेद का रूप ले लेता है। जीवन में मतभेद को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मनभेद से हमेशा बचना चाहिए सखियों।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मतभेद और मनभेद जो है बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो हमें अपने जीवन में किसको उसका हिस्सा बनाना चाहिए और किसको नहीं, ये हमें बहुत सावधानी से तय करने की जरूरत है।
1: और हर किसी के दृष्टिकोण को बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, अपना दृष्टिकोण किसी पर थोपे नहीं। हाँ, अपनी बात आप तार्किक तरीके से, भावनात्मक तरीके से कर सकते हैं ताकि दूसरे समझ सके, लेकिन दूसरे के विचारों को बिल्कुल नकार देना भी सही नहीं है।
0: और हमें दूसरों की भावनाओं के बारे में भी सोचनी चाहिए राखी। और कैसा लगता है जब हमारी वजह से हम ऐसा कुछ करते हैं, भले ही वो छोटी सी चीज क्यों ना हो, और उससे किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो
1: और हम उन मुस्कुराहटों पर निसार हो जाते हैं।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कैर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आपके साथ हैं हम दो सखियां, राखी और निधि। और निधि, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कुछ जानकारियों के साथ, है ना?
9: हाँ, तो प्रस्तुत है भेंट वार्ता और बहनों आज का विषय है समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। तो किस समस्या के ऊपर हम बातें कर रहे हैं ये हम जानेंगे भेंट वार्ता के अंतर्गत। और आज की हमारी मेहमान है शिल्पा शिवांगी और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
10: बहनों, युद्ध, संघर्ष और अशांति की स्थिति में होने वाली यौन हिंसा एक गंभीर मानवीय समस्या है। यह व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी एक अभिशाप है। सबको मिलकर इस विषय में सोचना होगा कि हम समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। आइए आज इस विषय पर हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। और आज इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं। आप हैं शिल्पा शिवांगी। आप विधि शिक्षण से जुड़ी हैं और रांची के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
11: नमस्कार राखी जी, मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वार्तालाप के द्वारा मैं अपनी बातों को श्रोताओं तक पहुँचा पाऊंगी।
10: जी, तो हम सीधा विषय पर आते हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि यौन हिंसा क्या है और इसके प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक है।
11: यौन हिंसा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी नुकसानदेह या अनचाहा यौन कृत्य जो एक व्यक्ति के मर्जी या उसकी सहमति के विरुद्ध किया गया है या कोई यौन संबंध उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ बनाया गया है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ यौन हिंसा हुई है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये स्त्री या पुरुष किसी के साथ भी हो सकता है और इसका प्रभाव ना केवल शरीर पर बल्कि आपको पीड़ित के मन पर भी दिखेगा। रही बात इसके विषय में जागरूक होने की, तो मैं कहना चाहूंगी कि जागरूकता वो कड़ी है जिसकी मदद से हम यौन हिंसा से लड़ सकते हैं या उसके दुष्प्रभाव से अपने समाज को बचा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक आजादी और सम्मान का उल्लंघन उस व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है। एक समाज के रूप में अगर हमने यह जागरूकता आ गई तो हमें इस चीज से लड़ने का भी जो समाधान है वो मिल जाएगा।
8: संघर्ष और युद्ध की परिस्थितियों में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं या बच्चे यौन हिंसा का शिकार बन जाते हैं। इसका आशय कभी कभी प्रतिशोध भी होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी?
11: जी, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहली बात, यौन शोषण जो है यह समाज की जो न्याय व्यवस्था है उसको सीधा सीधा चुनौती देता है। और जैसा कि हम सब समझते हैं, समृद्ध महिलाएं एक समृद्ध समाज का प्रतिबिंब होती हैं। ऐसे में यौन शोषण केवल एक अपराध नहीं होता। अगर आप युद्ध के स्तर पर देखें, जब कई बार कई देशों के बीच युद्ध होता है, वॉर एग्रेशन चल रहा होता है, ऐसे में यौन शोषण एक रणनीति के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यह केवल यौन इच्छा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, क्योंकि युद्ध यह दर्शाता है कि आबादी पर नियंत्रण दिखाया जा सकता है। और ऐसे में यौन शोषण खास करके महिलाओं के प्रति नागरिकों में दहशत तो फैलाती ही है और साथ में उन्हें अपमान का पात्र भी बना देती है। यह साथ के साथ उस देश की सुरक्षा प्रणाली को भी नष्ट करने का काम करती है। तो यह सीधा सीधा उस देश के नागरिकों के केवल शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर वार है। इसलिए हम अक्सर देखेंगे कि जब भी युद्ध होता है या युद्ध जैसी परिस्थितियां होती हैं तो महिलाएं और बच्चे इसका शिकार हो ही जाते हैं।
8: यह भी देखा जाता है, जैसा आपने कहा, कि शरीर की ही सिर्फ बात नहीं होती बल्कि उनके मन पर असर होता है, उनके आत्मसम्मान पर आघात होता है। तो इस मामले में पीड़ित जो हैं वो अक्सर सामने आने से डरते हैं या फिर संकोच करते हैं, झिझक है उनमें। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए?
11: राखी जी, मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी श्रोताओं से भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पे वास्तव में पीड़ित है कौन? क्या वह यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ व्यक्ति, या हमें स्वयं से भी यह प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्या केवल वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध यौन शोषण हुआ वही पीड़ित है, या हम सब एक समाज के रूप में पीड़ित हैं? हम अक्सर उस व्यक्ति को यौन शोषण होने के बाद समाज का एक कटा छटा बहिष्कृत टुकड़ा मान बैठते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति जो है वह तो अपराध बोध और दबाव से घिर जाता है और वह स्वयं इतना अपमानित और इतना हीन महसूस करता है कि उसके लिए समाज में खुलकर रह पाना, जी पाना, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर पाना, एक शिक्षक बन पाना, एक डॉक्टर बन पाना, किसी की पत्नी बन पाना, यह कितना कठिन होता है, यह मैं और आप समझ सकते हैं और अपनी आप बीती नहीं बताना चाहते हैं।
8: जी, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं खासकर बहुत ज्यादा अपमानित की समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। इस संदेश को सरल शब्द
11: अगर इस बात को मैं श्रोताओं को कुछ इस तरह समझाना चाहूंगी कि हिंसा एक व्यक्ति को बाद में मारती है पर समाज से बहिष्कृत होना उसे पहले ही मार डालता है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके जीवन में जो यौन शोषण उसने अपने साथ देखा होता है, उसे झेला होता है, वह तो उसे शरीर के स्तर पर नुकसान पहुंचाता है पर समाज के द्वारा अस्वीकृति और कलंकित किया जाना, उसे समाज के द्वारा दरकिनार कर दिया जाना, यह उसे ज्यादा उपेक्षित महसूस कराता है। और वास्तव में जो अपराधी हैं, हम उन्हें समाज से हमें उन्हें बहिष्कृत करना होगा, ना कि पीड़ित को। हमें तो पीड़ित से खुलकर बातचीत करनी होगी,

0: एक समाज के रूप में हमें यह बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि पीड़ा यौन शोषण पर आकर रुकती नहीं है, बल्कि वहां से शुरू होती है। इससे होने वाला जो नुकसान है, यौन शोषण से जो नुकसान होता है, वो वहां से प्रारंभ होता है, उसके बाद की घटना है। बहिष्कृत होना, कई तरह के आलोचनाओं से गुजरना, तो यह जो आलोचना और घृणा है, ये हमें अपराधियों के प्रति रखनी है, पीड़ितों के प्रति नहीं। और समाज जब इस बात को समझ लेगा तो मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं समाधान का हिस्सा बन ही जाएंगे।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़े सरल शब्दों में समझाया, ये बात लोगों को समझ में आएगी। और अब चलते चलते आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस विषय पर खुलकर बात करनी चाहिए? क्या इससे हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं?
0: राखी जी, मैं आपके इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि खुलकर बातचीत करना यह तभी संभव है एक समाज के रूप में, जब हम अपने मन और चेतना के द्वार को खोल दें। और यह भी तभी संभव है जब हम खुलकर बातचीत करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। जो यौन शोषण से पीड़ित व्यक्ति होता है, वह पहले तो बहिष्कृत कर दिया जाता है, तो यह हमारी एक गहरी नैतिक विफलता को दर्शाता है। एक समाज के रूप में हम कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं, यह इस बात को दर्शाता है। दूसरी बात यह कि मनुष्य की गरिमा को केवल उसके शरीर से आंकना एक बहुत भारी चूक है। ठीक वैसे ही जैसा कि हम सब जानते हैं, जो अष्टावक्र थे उनका शरीर वक्री था, पर वो ज्ञान और ज्ञान से परिपूर्ण थे। अगर हम इस उदाहरण से इस पूरी परिस्थिति को समझे, तो हमें यह समझना होगा कि व्यक्ति की गरिमा उसके कर्म, उसकी विचारधारा और उसकी चेतना में निहित होती है, इस बात में नहीं कि उसके साथ यौन पीड़न हुआ या नहीं हुआ। और इसलिए वो जो पीड़ित है, वो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, और उसे भी उतना ही खुलकर जीने का अधिकार है जितना समाज के बाकी लोगों को। तो इस विषय पर खुलकर अगर बातचीत की जाए और इस दिशा में अगर हम अग्रसर रहें, तो जरूर हम कोई ना कोई समाधान ढूंढ लाएंगे, और बिल्कुल हमें अपने समाज में एक बदलाव देखने को मिलेगा।
1: जी शिल्पा जी, आपने बहुत अच्छे से इस विषय पर जानकारी दी और अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: राखी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम के द्वारा श्रोताओं से जोड़ने के लिए।
1: जी
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता, समाधान का हिस्सा बने समस्या का नहीं। आज संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ानी बेहद जरूरी है, और इसी कारण हमने ये भेंटवार्ता अब तक पहुंचाई। आज की भेंटवार्ताकार थी शिल्पा शिवांगी और इनसे बातें की थी राखी शर्मा ने। और राखी, अब बातें तो हो गई, लेकिन हाँ। अब फिर से हमें लगता है कि बहनों को उम्मीद होगा कि हम कोई गीत उन्हें सुनवाएं, हाँ, तो एक सकारात्मक सोच के साथ कि भाई जिंदगी में कोई भी समस्या हो, समाधान कहीं ना कहीं है ही, तो चलिए हम सुनवाते हैं ये गीत बहनों को।

0: निधि, हम अक्सर अपने कार्यक्रम में स्वास्थ्य की बातें करते हैं और कैसे स्वस्थ रहना है इस बारे में कुछ ना कुछ टिप्स बहनों को दिया करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल। तो आज भी हम भोजन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य का आधार है। तो यूं तो हम खाना खाते हैं और हमें लगता है कि हम सभी अच्छा खाना ही खाते हैं, लेकिन ये जो भोजन है ये संतुलित होना चाहिए। तो संतुलित आहार की जो परिभाषा है ये बिल्कुल सही तरीके से हमें जानने की ज़रूरत है। तो संतुलित आहार यानी जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों और पानी भी पर्याप्त मात्रा में हो, है ना? तो इसे संतुलित आहार में, लेकिन आज हम बातें करेंगे कि भोजन में सलाद और फल क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है।
0: सलाद और फल जो हैं बहनों, विटामिन का स्रोत हैं। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इस तरह जो है शरीर हमारा वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण हो जाता है अगर हम फल और सब्जियां लेते हैं। विटामिन हमारे यहाँ अगर हमारे शरीर में है पर्याप्त तो,
1: हाँ बिल्कुल।
0: और सलाद और फल हमारे शरीर को खनिज और फाइबर भी प्रदान करते हैं।
1: और इन सब से हमारी पाचन क्रिया सही रहती है, जैसे फाइबर की बात तुमने
0: हाँ
1: बताई। और फाइबर यानी मैं बता दूं कि रेशा जो होता है फलों में या सब्जियों में भी, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, तो ये रेशा जो है हमारे पाचन तंत्र, पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और शरीर में ये पानी की कमी भी नहीं होने देता, क्योंकि फलों में हम जानते हैं कि बहुत पानी, किसी किसी फल में तो पानी बहुत होता है, करीब 90% तक पानी ही होता है। तो हमारा शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहता है, यानी कि खास करके गर्मियों के दिनों में पानी की कमी जो होती है वो नहीं
0: हाँ
1: होती।
0: और हरी सब्जियों और कम कैलोरी वाले सलाद को खाने से पेट जल्दी भर जाता है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि सभी इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाएं।
0: तो बहनों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की। इसी के साथ अपनी सखी राखी और
1: निधि को दें विदा। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का होगा, बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: Cena.
1: फिल्म संगीत, शुरुआत करते हैं फिल्म बागी के इस गाने से। आवाजें अमित कुमार और राधा पौडवाल की है, शब्दों में पिरोया है समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

आइए सुनते हैं फिल्म यारा दिलदारा से ये गाना। आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत वाद किया जतिन ललित ने।

आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान से ये गाना। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की, धुन बनाई है एस टी परमन ने।

चलते चलते कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म मिली से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज है। योगेश ने इस गीत को लिखा और संगीतवत किया एसटी परमन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय

0: कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802827 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया

0: 9000 से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic challenges and its continued support for terrorism. New Delhi has strongly rejected Pakistan's allegations on Jammu and Kashmir at the 62nd session of the United Nations Human Rights Council. Speaking at the session, First Secretary at India's Permanent Mission to the United Nations, Anupama Singh, asserted that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. India maintained that the only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their eventual return. Highlighting the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, India alleged that growing protests and unrest in the region reflect widespread dissatisfaction with continued repression and denial of basic rights.
2: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
1: The Delhi High Court has upheld the centre's decision to temporarily restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET UG 2026 re-examination on the 21st of June, saying the move was not disproportionate and complied with the law. Delivering the verdict, Justice Tejas Karia said the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the Information Technology Act and that the blocking order was supported by sufficient reasons. Telegram had challenged the order, alleged discriminatory treatment, and arguing that it had already removed hundreds of links related to unlawful NEET content and cooperated with authorities. In the FIFA World Cup, Mexico defeated South Korea 1-0 at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. And with that, we end this news bulletin.
3: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। रीनीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। IIT ISM धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 के जमशेदपुर रांची खंड में ओवरले कार्य का भूमि पूजन किया और कहा कि रांची कांडरा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का काम जल्द आगे बढ़ाया जाएगा। संजय सेठ ने भरोसा दिलाया कि यह रेलवे लाइन रांची बुंडू तमाड़ सिल्ली चांडिल और कांडरा समेत आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर कार्य शुरू कराया जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के हार के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रखंड प्रभारी के राजू के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

0: अजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन हैं।
1: जो हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा के पक्ष में मतदान किया है, अब बाद बाकी कहां गड़बड़ी है इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए। और हमें लगता है कांग्रेस के प्रभारी आत्ममंथन करें, इनका बयान हताशा का बयान है, अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहा है।
0: इधर राजद के बयान पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सभी बिंदुओं पर समीक्षा होगी।
2: क्या कुछ हुआ, समीक्षा हो रही है, सभी बातें छनकर सामने आ जाएंगी, किन परिस्थितियों में किन विधायकों ने वोट नहीं दिया या वोट क्रॉस वोटिंग की, लेकिन कुल मिलाकर जो भी परिणाम आए, पहली बार एक दलित एक हरिजन को राज्यसभा भेजा गया, उसके लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ।
0: 21 जून को होने वाली रीनीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। रांची रेल मंडल ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए दो परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें टाटीसिल्वे, मधुआ, लोहरदगा, बड़काकाना, टोरी और लातेहार सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। इसके अलावा स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल ने भी री नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को राउरकेला और टाटानगर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 68044 राउरकेला से सुबह 5:10 पर रवाना होगी और सुबह 9:20 पर टाटानगर पहुंचेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का ठहराव राउरकेला और टाटानगर के बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों और हॉल्टों पर दिया जाएगा। 21 जून को रांची के 21 केंद्रों समेत राज्य के अलग अलग शहरों में री नीट परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पिछली बार हुई घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और परीक्षार्थियों को कई लेयर की जांच से गुजरना होगा, जिसके लिए रांची जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत मिशन परिवार विकास अभियान 2026 के प्रथम चरण का राज्यव्यापी शुभारंभ किया गया, जिसके तहत सभी जिलों में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विशेष जागरूकता एवं परिवार नियोजन गतिविधियां आयोजित की गईं। एएनएम, सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों ने योग्य दंपतियों और समुदाय को परिवार नियोजन के महत्व, अस्थायी स्थायी गर्भ निरोधक साधनों और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम ने अपनी 100 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा में नई उपलब्धि हासिल की है। संस्थान को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में स्थान मिला है। वैश्विक रैंकिंग में संस्थान को 701 से 710 बैंड में जगह दी गई है। इस रैंकिंग में भारत के 52 संस्थानों के बीच आईआईटी आईएसएम धनबाद को 21वां स्थान मिला है, जबकि 13 आईआईटी में इसका स्थान 11वां रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे राज्य में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में धनबाद में आज रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ का शुभारंभ रणधीर वर्मा चौक से हुआ और इसका समापन सिटी सेंटर में किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी अमरेंद्र पाठक ने कहा कि नियमित योग अभ्यास स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
3: यह रन फॉर योगा का कार्यक्रम है, जिसमें जिला के सभी विभाग के पदाधिकारी अधिकारी भाग लिए हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ आम जनता को जागृति देने के लिए, यह बताने के लिए कि योग का महत्व कितना हमारे जीवन में है, सिर्फ योग को अपना करके हम निरोग रह सकते हैं, बिना दवा का, बिना औषधि का।
0: बोकारो में आदिवासी जमीनों पर कथित कब्जे के मामले को लेकर बोकारो सरना विकास समिति ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। समिति के अध्यक्ष महेश मुंडा ने आरोप लगाया कि भू माफिया आदिवासियों के जमीन का स्वरूप बदलकर उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं।
4: झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में कारों में किस तरह से आदिवासी जमीन की लूट हो रहा है। चितुलिया मौजा अंतर्गत न जाने कितने आदिवासी जमीन को भू माफियाओं ने उसका नेचर चेंज कर पूरा चितुलिया मौजा के जमीन बेच चुके हैं और यहाँ के जो रैयत हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है।
0: झारखंड में मुहर्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में लगभग 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार होमगार्ड जवानों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा। इसके तहत 5,850 होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचारों के अनुसार सेंसेक्स 790 अंकों की गिरावट के साथ 76,620 पर और निफ्टी 210 अंकों की गिरावट के साथ 23,960 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम केंद्र ने झारखंड के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम बारिश, बादल गर्जन और वज्रपात की संभावना है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला छोटा नागपुर रॉयल्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच होगा। इससे पहले कल धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तमाड़ में NH-33 ओवरले कार्य का किया भूमि पूजन। रांची कांड्रा रेलवे लाइन समेत क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति। री नीट अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने की विशेष व्यवस्था। रांची और चक्रधरपुर मंडल चलाएंगे स्पेशल ट्रेनें। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी होंगे उपलब्ध। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने हासिल की एक और बड़ी उपलब्धि। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बनाई जगह। झारखंड के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ मौसम खराब रहने की संभावना। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। पहला मैच धनबाद डायमंड्स और कोयलांचल सुपर किंग्स के बीच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: 46.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: कोडी और अफीम जैसे मादक, हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं गिरजा देवी, इनसे सुनते हैं ख्याल अबोघी में कांहरा।

अभी आप कीजा देवी से खयाल अभो अभो की में कान्हाड़ा सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज में चंद खजलें।

हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के गाए इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: successfully arrived at the Hedge port in Gujarat after crossing the strategically important Strait of Hormuz. It is carrying 62,370 metric tons of liquefied natural gas from Qatar's Ras Laffan terminal. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heat wave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माई गोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट

0: साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर गृह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद

0: मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीन नौसैनिक जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 917827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के

0: में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: 세다.
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म नाम से ये गाना। आवाजी पंकज उदास और साथियों की है, शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने, संगीत बद किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म क्रांति से, आवाज लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है, शब्द रचना संतोष आनंद के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास जताया है कि भारत लक्ष्य से पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस अनुवांशिक बीमारी के खिलाफ विशेषकर जनजातीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया।
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
0: विश्व सिकल सेल दिवस पर रांची सदर अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच मुफ्त उपलब्ध है। झारखंड के करीब 8 से 10% आबादी में सिकल सेल जीन मौजूद है, जिसके लिए जल्द ही राज्य में विशेष मुफ्त जाँच सर्वे अभियान चलाया जाएगा। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किफायती आवास परियोजना के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 322 लाभुकों को उनके नए और सुरक्षित पक्के मकानों की चाबियां सौंपी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय सांसद विद्युत वरण महतो ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।
2: लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनका विजन है कि 2028 तक कोशिश किया जाए कि सभी हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े भाई बहन को मकान मिले।
0: केंद्र सरकार पहली जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी VBG रामजी अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में 100 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारी तैनात करेगा। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के वास्ते 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन मंजूर किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। सभी संदेश केवल सत्यापित नंबर 7827980287 से भेजे जाएंगे। NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों ने 21 जून की पुनर्परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें इसे दोबारा डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने

0: चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। साहिबगंज जिले के राजमहल में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को कृषिका ऐप के माध्यम से केसीसी लोन के आसान तरीकों की जानकारी दी गई। अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने किसानों को लोन में पारदर्शिता और रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।
1: जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य कैसे अच्छी से अच्छी हो और हमारे किसान भाई कैसे सशक्त से सशक्त बने। क्योंकि आज के डिजिटल युग है, उसमें यदि आप कृषिका ऐप के माध्यम से यदि किसान भाई हमारे लोन अप्लाई करते हैं तो वो उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और उनमें एक स्पष्टता रहती है अपने ऋण के बारे में।
0: राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हजारीबाग में सर्वाधिक 3 जबकि रामगढ़, पलामू, लोहरदगा, गोड्डा और पश्चिम सिंहभूम में एक एक व्यक्ति की जान गई। इस बीच रांची मौसम केंद्र ने धनबाद और दुमका सहित 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में यहां तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। प्रशासन ने खराब मौसम में लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, न कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है
2: जी।
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार धाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी

0: हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगे। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओ, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओ ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहाँ कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओ डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओ बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
1: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए 8800440559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की।
3: बिन्नी का सपना।
2: एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: तो श्रोता अभी आप सुन रहे थे,
2: बाद में पता चला कि ये

0: लिलिपुट द्वीप है।
1: आज का हमारा
0: जब मेरी नींद खुली
1: होता है तो अपने मित्र
0: तो मैंने अपने
2: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
2: थोड़ा सा फंबल था
0: कि कोई चीज
2: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
0: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को

उठाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटी से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा।

0: हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का

0: आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज बस थोड़ी ही देर में।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: कार्यक्रम रांची मेलोडीज का पहला नगमा फिल्म जब से फूल खिले से मोहम्मद रफी की आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा हुआ और संगीतबद्ध किया हुआ कल्याण जी आनंद जी का.

आइए सुनते हैं फिल्म फागुन से ये गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है, शब्दों में पिरोया है कमल जलालवादी ने, संगीतवत किए ओपी नैयर ने।

लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से ये गाना। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा, संगीत पर किया शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं फिल्म सरगम से ये गाना। शब्द रचना आनंद बख्शी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गाना, आवाजें पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथियों की है। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रांची में लोहरेज यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत मात्र 3 महीनों में 50 लाख टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और देश भर में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। सरायकेला में पुलिस की ओर से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। साप्ताहिक बाजार और नगर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों को नशाखोरी के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए युवाओं से सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा और कर्माटांड थाना क्षेत्रों से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि इनके पास से 9 मोबाइल और 22 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र स्थित ईटागढ़ के दुर्गम जंगल से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया है। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: आकाशवाणी रांची से नशर हमारे उर्दू प्रोग्राम में हम अपने तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करते हैं। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपकी दोस्त फौजिया और हमारे साथ है हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्ला। आदाब फौजिया।
0: आदाब हिदायतुल्ला, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और हमारे सामईन भी बहुत अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल। और हिदायतुल्ला, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव को कम करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है और सबसे बेहतरीन जरिया क्या है, ये आप बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, आप तो एकदम डायरेक्ट आते ही शुरू हो गई
0: बिल्कुल
1: डिप्रेशन,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेट अभी हर कोई नजर आता है। बच्चों को देखा जाए तो उनका जो है डिप्रेशन है
0: बिल्कुल, मतलब
1: जी।
0: कुल मिलाकर के
1: हाँ हाँ
0: सभी लोग
1: जी।
0: तनावग्रस्त
1: अब
0: हैं।
1: हाँ जी, इससे बचने का सबसे अच्छा अगर कोई उपाय है तो वो फिजिकली एक्टिविटीज है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, 21 जून को योगा डे मनाते हैं हम लोग। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में योगा के आलमी दिन की तजवीज पेश की थी। 177 ममालिक की हिमायत के बाद अक्वामे मुत्तहदा ने 21 जून को ये दिन मनाने का ऐलान किया। 21 जून का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये साल का सबसे तवील दिन होता है।
1: बिल्कुल फौजिया, योगा नहायत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए, इसलिए कि जब तक हम योगा नहीं करेंगे तो फिजिकली तौर पर हम सही नहीं रह पाएंगे। और आपकी, चूंकि हम इसी जिस्म से अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करते हैं, तो इसलिए इस जिस्म को चुस्त तंदुरुस्त सेहतयाब रखना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ख़ास वक्त का
0: यून करें या
1: तायुन
0: मुकर्रर
1: करें,
0: जी
1: मुकर्रर करें। और उस खास वक्त में सबसे अच्छा वक्त जो होता है फौजिया,
0: वो सुबह
1: वो सुबह के वक्त का होता है और शाम के वक्त का होता
0: जी
1: है।
0: हाँ
1: तो सामिन, ये दोनों वक्त में आप अपने सेहत के लिए कम से कम 30 मिनट जरूर निकालें।
0: इंसान की जिस्मानी, जहनी और रूहानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए योगा की अहमियत को हम बहुत ज्यादा उजागर करते हैं।
1: जी, और इसके साथ फौजिया, ढलती उम्र के जो लोग हैं, जो 40 क्रॉस कर गए, उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो योग करें, एक्सरसाइज करें और खुद को बिल्कुल फिट रखें।
0: आप खुद ही देखिए हिदायतुल्ला, अभी का जो दौर चल रहा है और पहले के जमाने के दौर के लोग, इंसान को देखिए कितने सेहतमंद तंदुरुस्त होते थे, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते थे, बाहर निकलते थे घर से और ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा लेते थे और मेहनत मशक्कत करते थे। हम अभी अपने घर का काम ही देख लें कि सारी काम हम मशीन से करते हैं, खड़े होकर गैस पे खाना पकाते हैं, कपड़ा मशीन से धोते हैं, मिक्सी में मसाला पीसते हैं, और पहले की खवातीन सारे काम खुद से करती थी, चूल्हा जलाकर सिल पे मसाला पीस के, इसलिए वो बहुत ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त थी। तो इसीलिए 21 जून को ये दिन मुकर्रर किया गया है कि हम अपने जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए योगा पे इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल फौजिया, देखिए पहले फिजिकली काम ज्यादा था और अब फिजिकली के साथ साथ मेंटली काम भी है। ये दौरे जदीदियत पूरी तरह से मशीनरीज हो गया है, इसलिए आज ज्यादा जरूरी है योग करने की।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और योग के साथ साथ अगर सामीन बात किया जाए, नशे का लत जो है बढ़ते जा रहा है, तो इस नशे के लत को कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए?
0: बिल्कुल हिदायतुल्ला, आपने बहुत सही कहा कि नशा हमारे समाज के लिए एक ऐसी लानत है जो इंसान की जिंदगी, उसकी इज्जत और सेहत सबको तबाह व बर्बाद कर देती है। आज के दौर में नशा मुआशरे को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। एक सेहतमंद और तरक्की याफ्ता मुल्क के तामीर के लिए हिंदुस्तान का नशा मुक्त होना बेहद लाजमी है। नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे कुंबे को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करता है। मुशाहदे से पता चलता है कि जिस्मानी व जहनी खराबी शराब, चरस, अफीम और दीगर अन्य नशीली चीजों के इस्तेमाल से इंसान अपने जहनी तवाजन को खो बैठता है। नशा करने वाला शख्स अपने गाढ़े पसीने की कमाई को जाय कर देता है, जिससे घर में गुर्बत और कश्मकश पैदा होती है।
1: अरे, आपने बहुत सही बात कही कि नशा एक ऐसा नाग है, ये तमाम चीजों को डस लेता है और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: हिदायतुल्लाह, हम बताना चाहें कि हमारे आज के नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। अफसोस की बात है कि आज की इस नई नस्ल जहनी तवाजन या गलत सोहबत की वजह से इस दलदल में धंसती जा रही है। इस लानत को खत्म करने के लिए हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी बेदार होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, समाजी तौर पर जब तक हम बेदारी पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक के अपने शहर को, अपने एस्टेट को या पूरे मुल्क को हम नशा मुक्त कर ही नहीं सकते। तो हम तमाम लोग का ये फरीजा है कि वो अपने मोहल्ले के और अपने घरों के सही देखभाल करें और नशे से पूरे मुआशरे को निजात दिलाएं।
0: बिल्कुल, नशा मुक्त भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अज्म होना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को इस जहर के खिलाफ बेदार करना होगा। जब हमारा मुल्क नशे की जंजीरों से आजाद होगा, तभी हमारा हिंदुस्तान हकीकी मायनों में बुलंदियों को छुएगा। आइए हम सब मिलकर ये अहद लें कि हम नशा मुक्त समाज की तामीर करेंगे। हिदायतुल्ला, बातें बहुत हो गई तो थोड़ा सा वक्फा लेते हैं और अपने सामईन को लिए चलते हैं नगमे की तरफ और सुनवाते हैं उन्हें ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

0: बनाए
1: ऐसा
0: ऐसा
1: हिंदुस्तान।
0: हिंदुस्तान। और
1: बहुत खूब जी
0: ये भी मंजरनामा एक सामने रख रहा हूं
1: जी जी
0: कि
1: जरूर
0: माना के गर्दिश में पड़ा है अपना हर एक सितारा, अपना हर एक सितारा। रोशन कोई राह नहीं है, हर सू है अंधियारा, हर सू है अंधियारा। जाने कब पूरा होगा बरसों का ख्वाब हमारा, बरसों का ख्वाब हमारा। मुल्क के हर गोशे में गूंजे प्यारो वफा का नारा,
1: बहुत खूब
0: हाँ
1: बहुत खूब
0: प्यारो
1: बहुत खूब
0: वफा का नारा। बात करेंगे अमनो अमा की, हो जितना

0: जहां पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान। और ये भी काश के ऐसा भी होता,
1: बिल्कुल
0: जहां ना हो मजहब की दीवारें और ना कोई दंगा,
1: क्या बात है,
0: और ना कोई दंगा, हर हाथों को काम मिले हो पढ़ा लिखा के लफंगा, हाँ पढ़ा लिखा के लफंगा।

0: देश रहे और ऊंचा अपना तिरंगा।
1: हाँ
0: ऊंचा अपना तिरंगा हो ऊंचा अपना तिरंगा। इंसानी रिश्तों से महके घर आंगन दालान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान।

0: बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और ये भी बंद,
1: इरशाद।
0: आओ अपने देश को मिलकर ऐसा देश बनाए, हाँ ऐसा देश बनाए, रंग बिरंगे फूलों से हम इसकी मांग सजाएं,
1: बहुत
0: हाँ
1: खूब, बहुत
0: इसकी
1: खूब।
0: मांग सजाएं, एक है हम और एक रहेंगे, दुनिया को बतलाएं, हाँ दुनिया को बतलाएं, मिलके करेंगे देश की रक्षा, जैसी भी आफत आए,
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: जैसी भी आफतें आए, अब न बटेंगे हम आपस में, जाए तो

0: बनाए ऐसा हिंदुस्तान,
1: बिल्कुल
0: ऐसा।
1: कुदरतुल्ला साहब, आपका गजल बहुत ही खूबसूरत है और इससे मुतासिर होकर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि तुम्हें सब मजहबों की आजमतों का ध्यान रखना है,
0: क्या बात है,
1: तुम्हें सब मजहबों की आजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना
0: क्या
1: है,
0: बात है, वाह वाह वाह,
1: अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं पूजा भी।
0: बिल्कुल
1: मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं
0: पूजा
1: पूजा
0: भी।
1: भी, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है,
0: हाय हाय, यही पहचान थी मेरी,
1: यही
0: यही
1: पहचान
0: पहचान
1: रखना है।
0: रखना
1: चलिए
0: है।
1: आप अगला
0: आओ
1: कलाम पेश करें। जी
0: ऊंच नीच का झगड़ा ना हो, ना नफरत की बातें।
1: बिल्कुल,
0: काश काश के
1: काश
0: मेरा हिंदुस्तान ऐसा होता,
1: ऐसा ही होगा,
0: और
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह ऐसा ही
1: ऐसा ही
0: होगा,
1: होगा।
0: ये
1: जी
0: मैं पूर्ण उम्मीद हूं और ये
1: जी
0: शेर पहुंचा रहा हूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऊंच नीच का झगड़ा ना हो, ना नफरत की बातें, ना नफरत की बातें, सदा रहे जीवन में अपने खुशियों की सौगातें। हाँ खुशियों

है धर्म अलग और अलग अलग हैं जातें, हाँ अलग अलग हैं जातें, ऐसे में हो प्यार वफा की बरसेंगी बरसातें, बरसेंगी बरसातें, भरा रहे हर रंग के फूलों से अपना गुलदान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान।

मान बनाए ऐसा हिंदुस्तान। और आखिरी बंद, मुफ्त के राशन से ऐ कुदरत जान छुड़ानी होगी, हाँ जान छुड़ानी होगी। अपनी रोजी रोटी खुद मेहनत से कमानी होगी, मेहनत से कमानी होगी। सत्य अहिंसा मेहरो वफा की राह दिखानी होगी, हाँ राह दिखानी होगी। सीता वो मरियम जोहरा की लाज बचानी होगी, हाँ लाज बचानी होगी, हो लाज बचानी होगी। तब जाकर दुनिया में बनेगी।

0: ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान जहां पे सारे लोग करें एक दूजे का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाए, ऐसा हिंदुस्तान, हाँ ऐसा हिंदुस्तान हो, ऐसा हिंदुस्तान।
1: बिल्कुल सामीन, ये इतना अजीम, इतनी खूबसूरत, हसीनो जमील मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। महासागर की तरह गहराई और हिमालय की तरह बुलंदी इसमें देखी जा सकती है। इसे अजीम बनाने में किसी एक कौम या एक शख्स का हाथ नहीं है। ये गौतम से लेकर गांधी तक, जिसमें चिश्ती भी आते हैं, नानक भी आते हैं, टैगोर भी आते हैं, अल्लामा इकबाल भी आते हैं, मीरो गालिब भी आते हैं, तुलसी और मीरा भी आती हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। एक दो दिन में ये मुल्क नहीं बना है। अगर किसी के कुर्बानियों को हम नज़रअंदाज करेंगे तो हिंदुस्तान के तहजीबी सरबुलंदी पर दाग लगाना।
0: गजल के चंद अशार। वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा।

और जाने कब होगा अंधेरा मेरे घर से रुखसत, जाने कब होगा अंधेरा मेरे घर से रुखसत, कब मेरे हिस्से में सूरज का सफर आएगा, कब मेरे हिस्से में सूरज का सफर आएगा। और ये भी शेर सुन ले कि जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मुकद्दर में नहीं उसकी तमन्ना कैसी, जो मेरा हक है वो एक रोज मगर आएगा, जो मेरा हक है वो एक रोज मगर आएगा, फिर मेरी आंखों में आ जाएगी पहले सी चमक, फिर मेरी आंखों में आ जाएगी पहले।

0: कोई शामो सहर आएगा, फिर लिए फूल कोई शामो सहर आएगा। अब तो आदत सी हुई जाती है तन्हाई की,
1: क्या बात,
0: अब तो आदत सी

0: कि ये किसने कहा तुझसे कि तू मुझसे मिला कर। आपकी जो गजल है उसी से मिलता जुलता हम ये शेर कहेंगे कि ये किसने कहा तुझसे कि तू मुझसे मिला कर, हाँ इतनी गुजारिश है कि मेरे दिल में रहा।
1: क्या बात है, वाह वाह
0: जी। चलिए आप
1: गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, गम के मारो जरा कुछ देर अभी सब्र करो, रात ढल जाएगी फिर नूर सहर आएगा, रात ढल जाएगी फिर नूर सहर आएगा। और ये भी खास कर तवज्जो का तालिब है कि मेरे कमरे में उदासी

0: उदासी का बसेरा है बहुत, जाने कब गम से निकलने का हुनर आएगा, जाने कब गम से निकलने का हुनर आएगा। और मक्ते का शेर कि एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत,
1: क्या बात है,
0: एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत, एक मुद्दत से जो लौटा नहीं घर को कुदरत, क्या वो एक रोज मुझे लेने इधर आएगा, क्या वो एक रोज मुझे लेने इधर आएगा, वक्त बदलेगा नया दौर जफर आएगा, जर्द पत्तों पे बहारों का असर आएगा। बहुत शुक्रिया।
2: तो सामईन, अभी आप कलाम शायर के तहत समात फरमा रहे थे जनाब कुदरतुल्ला कुदस से उनके चंद खूबसूरत गजल। और सामईन, उनके गजल से मुतासिर होकर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि उदासी के पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, उदासी के पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो मंजर बदलना चाहते हैं।
1: बिल्कुल फौजिया, और स्टूडियो की घड़ी अब हमें मजीद बातें करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए सामईन आप अपने दोस्त हिदायतुल्ला
2: और फौजिया दोनों को अगली मुलाकात तक के लिए दे इजाजत। आदाब।
1: आदाब।

अब ही आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। सूत्रधार थी फौजिया तजी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चले, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अभी सुबह थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे सांझ सरगम 4:35 पे, प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम के 5 और 6 आप सुन सकेंगे। 5:02 पे आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है स्त्री सुरक्षा और युवाओं की भूमिका विषय पर, इतिहास में आज का दिन, भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में आप सुन सकेंगे। रोचक तथ्य और समसामयिकी पर भी चर्चा होगी। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम शाम के 5:30 पे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

की बेटियों को सशक्त बनाने का एक दशक, इस विषय पर ये चर्चा होगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। खेतीबाड़ी कार्यक्रम 6:02 पे आज इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का विषय है लतरदार फसलों के प्रमुख रोग एवं उसका प्रबंधन विषय पर। विशेषज्ञ डॉक्टर लाहम दोरजी, इनसे बातचीत करेंगे मनोज कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय कुमार लाल की। हमारी दुनिया कार्यक्रम 6:32 पे आप सुन सकेंगे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय बदलता मौसम और हमारा स्वास्थ्य। साथ में आप सुनेंगे नागपुरी वार्ता, विषय नागपुरी शिष्ट साहित्य का विकास विषय पर। भेंट वार्ता का डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी, भेंट वार्ता का डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। प्रस्तुति होगी इस कार्यक्रम की संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार 7:00 जिले में आजकल 7:11 पे, 7:15 पे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम, फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा 8:00, विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण 8:10 पे, सुनहरी यादें कार्यक्रम फिल्म संगीत से भरा एक कार्यक्रम 10:00 और शास्त्रीय संगीत 10:30 पे आप सुनेंगे सितार प्रयाग चांदनी कल्याण में आलाप और गत। ये था हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण के तहत। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम।

फिल्म 9-2-11 का गीत अभी आप सुनेंगे। किशोर कुमार की आवाज़ में, रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत सचिन देव बर्मन का।

फिल्म चिराग का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब सुने फिल्म तीन देवियां का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: एफएम संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म गाइड का यह गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, रचना शैलेंद्र की, संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: भाई और बहनों, मेरी बहन मेरे कहने के ऊपर मेरे सिर पर बोझ रखकर ऐसा

0: और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म गुमराह का गीत। श्रोता हूँ आपको फिल्म सावन की घटा का गीत सुना रहे हैं। महेंद्र कपूर की आवाज है, रचना एस एच बिहारी की, संगीत ओपिन नैयर का। तो आइए सुने फिल्म सावन की घटा का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: मेरे जान तुम पे सदके।

0: इस साथ आज का सांझ सरगम कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में 30 जून से SIR कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके तहत PLO घर घर जाकर मतदाताओं को चिन्हित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इसके सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों और अन्य चुनाव अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण शुरू हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में आज रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में योजना के क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। लोहरदगा के राजेंद्र भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेताओं ने केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की और उन्हें युवाओं, किसानों तथा वंचित वर्गों के संघर्ष का प्रतीक बताया। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण आज हटिया से खुलने वाली हटिया पूरी तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 2:30 के स्थान पर आज रात 7:30 पर हटिया से प्रस्थान करेगी। देवघर के सदर अस्पताल में आज विश्व सिकल सेल दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज गुप्ता और उपाधीक्षक डॉक्टर सुषमा वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज के सायंकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं, आइए आपको बता दें, 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें एक ही गीतकार के गीत सुनवाए जाएंगे। श्रोताओं, 5:10 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित रोजगार मेला 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा होगी बीज उपचार के महत्व पर। उरांव लोकगीत के कलाकार होंगे रमेश लकड़ा और उनके साथ ही भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, मिश्रित खेती से लाभ। भेंटवार्ताकार होंगे संजोग कुमार बानराव। और एक लोकगीत आप सुनेंगे, मुंडारी लोकगीत, कलाकार होंगे जादू मुंडरी और उनके साथ ही। शाम 6 बजे आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। शाम 6 बजे कार्यक्रम होगा हुआकड़ा, जिसमें चर्चा की जाएगी जामुन फलों से लाभ पर। हीरो गीत आप सुनेंगे जयंती बारी और उनके साथियों से। जानकारी की बातों के अलावा भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, कुटीर उद्योग से लाभ इस विषय पर। भेंटवार्ताकार होंगी दीपिका हेम्ब्रम। और अहादी लोकगीत आप सुनेंगे मिलानी बोद्रा और उनके साथियों से। 6:30 पर होगा कार्यक्रम नन्ही दुनिया, जिसमें चर्चा की जाएगी राष्ट्रीय पठन दिवस पर। 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएगी विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, विषय होगा पर्यावरण। विशेषज्ञ होंगे भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। 7:45 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए 8 बजे श्रोताओं आप सुनेंगे अपने ही फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा।

नमस्कार। 45 मिनट पर समाचार संध्या का समय होगा और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। रात्रि 10 बजे हमारी गज़लों की महफिल सजेगी और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरों के रंग, जिसमें आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार गीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर सभा समाप्ति की घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज के सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में। और अब सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में ये गीत। फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित रोजगार मेला 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: स्थित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रयू। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड ऑलरेडी, इज इन विज्ञान भवन एंड इज इन अ सेपरेट हॉल वेयर इज हैविंग अ टॉक, अ डिस्कशन विद द बेनिफिशियरीज हु आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड टुडे फ्रॉम दिस योजना, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister, and then after that he'll be coming over here in, say, in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about, about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. Now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost And then, of course, and the final aim, the crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446.
1: मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
2: दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क। व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत। We're going to start the business, and then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS, and then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through that is the forgetting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई. रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
2: feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है
1: भारत सरकार जी. अरे तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
2: Split into two distinctive employees jinko pehli baar naukri mili
1: pehli baar.
2: This component focuses directly on the young individual and the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh, and the worker must not have any prior EPFO. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one, after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the, so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल सभी को फायदा है. बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
2: Yes. See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get... And then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए को टच भी करते हैं दिल में कहीं और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का कुछ बेहतर करने का इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी 4 श्रम संहिताएं लागू महिला कर्मचारियों के लिए लाभ नारी शक्ति समान कार्य के लिए समान वेतन सहमति के साथ धान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है ऐसा कह सकते हैं ना
2: फुलफिल अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इन फैक्ट दिस एप्लीकेबल पीरियड फॉर दिस वन द वन व्हिच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ The 31st of July 2027. Fracturing sectors, heavy industries, where it is means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are extra. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization. It is a strength of 7.9. And then 84 lakh pensioners who are being
1: से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है बहुत खूबसूरत लग रहा है रंग बिरंगे पुष्प खुश एक अलग सी हवा है ये
2: And the atmosphere is really fantastic. It's really electric, you know. Because, see, everyone is looking towards the entrance to the plenary hall because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता
2: He is putting a lot of stress on them and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. सो दिस इज सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
2: यस बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू 728 डिस्ट्रिक्ट्स राइट नाउ एंड ऑलरेडी 15 लाख पीपल हैव ऑलरेडी गॉट द एम्प्लॉयमेंट लेटर, द जॉब लेटर्स, एंड दैट्स टोटल इंसेंटिव व्हिच इज गोइंग टू गो टू देम इज 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें, एंड्रू तो जरूर बताना चाहेंगे, योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
2: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, and they are paid something for every time they give a taken a new person, a new job seeker, they are also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है.
2: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिलाके कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
2: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So we are going digital in every field. So we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
2: Yes, so it's full. Not a single seat is empty. People are, they're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to their phone that they've got their letter.
1: एन अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड। और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए। और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है। और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके। और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं।
2: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, यू नो दिस इज द एलिजिबल

0: operating and manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job, and our Prime Minister has given this job to me. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... Short film that will be filmed on the screen. And then after that, the magic button.
1: Magic button.
0: People across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build in rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India the way is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. Plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास

0: में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready, all are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है, जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना, ये एक प्राउड मोमेंट होता है, नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and he will see that it you come up in your life. So he said that low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का, तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा।
1: yes,
0: तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी एक किताब आती है जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में। और बच्चों को लगता था परीक्षा, अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं, है ना। तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं। और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से।
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
0: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है।
1: yes.
0: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी।
1: yeah.
0: है ना?
1: And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meagre amount, some may get very meagre amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They have, they get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं
1: yes.
0: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
1: सो इन फैक्ट द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो, देयर आर डेफ एंड डंब पीपल आल्सो ओवर हियर, एंड देयर इज वन पर्सन
0: ट्रांसलेट किया,
1: या ही इज ट्रांसलेटिंग थ्रू एक्शन. इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी हिम, यू नो, द वे ही इज डूइंग द म्यूजिक एवरीथिंग, एंड इज से, एंड व्हेन द वर्ड्स, यू नो, व्हेन द वर्ड्स कम, ही इज ट्रांसलेटेड थ्रू हिज द एक्शंस, यू नो. एंड it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
0: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
1: yes.
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
1: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. दैट विल बी अ प्रिविलेज फॉर द बेनिफिशियरी, द स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
0: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का आदर स्वागत एवं
1: अभिनंदन. द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस्क.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
1: फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट.
0: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
0: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दें।
1: And now the welcome remarks.
2: जोरदार तालियां हो जाएं।
1: बश्री मनसुख मांडविया, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाई एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक

0: देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे। और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button, and the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money, and the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
8: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
5: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया

जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है, इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है, और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार
उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है, और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था, उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी कि इतना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले,
और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसे पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है।
मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बढ़ाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों,
बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो, या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित है। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा। हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं।
जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदी हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047
जब देश

0: is what? My oath is, my oath is the fulfillment of your dreams.
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है ऐसा उन्होंने कहा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए उन्हें साकार कर बात है ना एंड्रू और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रू ओबी टीम इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ नमस्कार
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रियो
3: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को
4: The incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. More than 63 lakh employees have been brought into the formal workforce under PMVBRY, of whom nearly 30% are women. PMVBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, the first-time employees are eligible for an incentive up to 15,000 rupees, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation.
5: पुनीत 2004 से 14 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ रोजगार की दर थी और अगर हम देखते हैं 2014 से लेकर के 24 तक तो ये 17 करोड़ अब आंकड़े उभर कर आए हैं आप इस ग्रोथ स्टोरी को कैसे देखते हैं
6: प्रति देखिए भारत में यदि पिछले हम 10-12 वर्षों के इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें तो एक पूरी नई कहानी एक तरह से लिखी गई जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले भारत का जो ग्रोथ इंजन था वो ज्यादातर सर्विसेज सेक्टर से ग्रो कर रहा था और उसमें रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज होती थी वो थोड़ी सीमित होती थी वो एक तो सीमित होती थी एजुकेशन के बेसिस पे स्किल्स के बेसिस पे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डॉक्टर्स इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी और जो बाकी जो सेक्शन सोसाइटी थे वहां पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती थी क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग या स्किल सेट कम होता था तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी हमने देखा है कि जो पीछे 10-12 वर्षों से सरकार की नीतियां रही हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो उन क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली स्कीम्स हैं जहां पर पहले अपॉर्चुनिटीज कम थी और भारत को वहां पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है तो इस प्रकार से आप देखें तो ये नंबर्स बढ़े हैं काफी ज्यादा बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो एवरेज सैलरी लेवल है उसमें इंकम में इम्प्रूवमेंट हुई है तो मुझे लगता है ये काफी डिफरेंट स्टोरीज हैं एक प्रकार से नई एरा है ये एम्प्लॉयमेंट की और भारत को जरूरत है क्योंकि हमारा बहुत तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और यंग जो सेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आई थिंक इट इज रियली बैडली नीडेड
4: Puneet, you mentioned about the services sector earlier on. Prachi mentioned about the time period from 2004 to 2014, 10 years. But now you talk about the other things. Clearly, we're a consumption-led economy now, leading to growth and manufacturing, of course. This is one point. The other thing is that Prime Minister often talks about the demographic dividend, right? So we have this workforce, the youth mostly, which

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित रोजगार मेला 2026 का विज्ञान भवन नई दिल्ली से शुभारंभ का सजीव प्रसारण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: जय हिंद बच्चों, आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, आपको पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का अर्थ मालूम है? पुस्तकालय का अर्थ है वह स्थान या वह भवन जहाँ अध्ययन, संदर्भ और शोध के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और अन्य पठन पाठन सामग्रियों का व्यवस्थित संग्रह रखा जाता है और यह ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ शांतिपूर्ण वातावरण में लोग पढ़ सकते हैं। बच्चों, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। भारत में आज यानी कि 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस का 19वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस दिवस को देश में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। पीएन पेनिकर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। वह शिक्षक और समाज सेवक थे जिन्होंने केरल में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की थी। उनको केरल में पुस्तकालय आंदोलन का पिता कहा जाता है। पीएन पेनिकर ने अपने गृह नगर में एक अध्यापक के तौर पर 1926 में सदानाथ मर्म पुस्तकालय की शुरुआत की थी। पीएन पेनिकर 1 मार्च 1909 में पैदा हुए और 19 जून 1995 में उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म केरल के नीलमपरूर में गोविंदा पिल्लई और जानकी अम्मा के घर हुआ था। एक शिक्षक के तौर पर समाज में उनका गहरा प्रभाव रहा। 1945 में 47 ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ तिरुविथामकूर ग्रंथशाला संगम की स्थापना हुई जिसका नेतृत्व पेनिकर ने ही किया था। इस संगठन का नारा पढ़ो और बढ़ो था। पेनिकर ने गांव-गांव की यात्रा के जरिए लोगों को पढ़ने का महत्व बताया और शिक्षा के प्रति जागरूक किया। 1975 में ग्रंथशाला को क्रिपस के अवार्ड से नवाजा गया और पेनिकर 32 सालों तक इस संगठन के सेक्रेटरी रहे। तो बच्चों, आज के दिन का उद्देश्य है लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, छात्रों को के बीच किताबों के प्रति प्रेम जगाना, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना और साक्षरता के महत्व को उजागर करना है। तो चलिए बच्चों, हमने जाना राष्ट्रीय पठन दिवस के बारे में, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सनी राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: परिवार जो बनमा बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआड़ा धारा आम बोले रुआड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: मंगलोरा गाँव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घरे बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
6: मुतम बुरंग सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर मिनाया वापा मेरे तपा मेरे वा बेटा मिटका
7: अन्या मुतम दो बुंबई कोड़ा पटन मुतम बुंबई कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन मुतम कितना ही कोड़ा मैंने मैं बुरुड़ी ने बागिया तोड़ के ये दुना से यार सी कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमे बुरुड़न गई हैं तब जाए तेरे काका भी वो उन्हें बुको को काको मेल मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते सेसन का है वो आगे बिठा हुरा इनका अली आया नु तुम कहीं ना मिल आप ही लेते ना
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति

0: लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: चलिए, इन संदेशों के बाद आइए जानकारी लेते हैं मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है। जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3rd तल्ला चैबासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचनार्थ जारी।
2: समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: चलिए इन संदेशों के बाद आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार, निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?

इसी गीत के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55 होने वाले हैं। आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि, संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम से पहले कुछ युवाओं से बातचीत भी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योग और युवाओं के बीच एक मजबूत सेतु है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में भी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बोकारो में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां बतौर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है।
2: कंज्यूमर्स को लेकर के एक स्मार्ट मीटर और साथ में जो गवर्नमेंट के हमारे जितने कनेक्शंस हैं, पहले चरण में प्रीपेड मीटर, ये करने का जो विचार है इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के जो लॉसेज, जो पावर डिपार्टमेंट सामान्यतः AT&C लॉसेज एक बड़ा विषय रहता है हर प्रदेश में, तो यहाँ भी कैसे बिजली की चोरी को रोका जाए, इन सब बातों पर भी विचार किया गया है।
0: वहीं राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता बरतने और DVC के साथ मिलकर बिजली वितरण सुधारने का आग्रह किया।
3: हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहां के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए कोई एक टीम आकर एक ज्वाइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने JSLPS की महिलाओं के कार्यों की सराहना की और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी को रेखांकित किया।
4: मैं JSLPS की बहनों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के प्रयास से एक योजनाएं सरकार की सफल हो रही है। आप लोग बिरसा हरिद्राम योजना से जुड़ें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था कि हमारी बहनें स्वावलंबी हो और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है उसको जोड़ करके इस तरह के काम किए जाए जिससे आपकी आजीविका भी सुनिश्चित हो।
0: भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी जिला निर्वाचन और जनसंपर्क पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भ्रामक और फर्जी खबरों पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी सूचनाओं का तथ्यों के साथ तुरंत खंडन करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि SIR के सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित अन्य अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
5: ट्रेनिंग प्रोग्राम कमीशन के हिसाब से 20 तारीख को DO डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ERO AIRO करोगे, फिर उसके बाद अपने फील्ड ऑर्डर उसके बाद वो ट्रेनिंग अपने प्रक्रिया में शुरू करते हैं। ट्रेनिंग में इनोग्रेशन फेज का संबंधित कितना भी बात है, इनोग्रेशन पीरियड का है, उसी का संबंधित ट्रेनिंग होगी। उसमें ट्रेनिंग दोनों होगा, प्रक्रिया का भी, इंस्ट्रक्शन का भी होगा, फिर उसके बाद टेक्निकल डिटेल भी होगा। फिर फॉर्म भरवाने के लिए, इनोग्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या डिटेल चाहिए, कैसा, वो डिटेल ट्रेनिंग होगा।
0: रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज SIR कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि बैठक में SIR की बारीकियों पर चर्चा की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया गया। CIPET रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ और हरित भविष्य का संकल्प लिया। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS करेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि आरोपियों के कुछ इंटरनेशनल लिंक मिले हैं।
6: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे और फिर धीरे धीरे अनुसंधान करते हुए उन्हें कोडरमा के आगे एक गजंडी करके एक रेलवे स्टेशन उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ATS के द्वारा किया जाएगा।
0: एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है, जबकि पलामू और गढ़वा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि। संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
8: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
9: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं और इसके पीछे कारण है। उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
8: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही है?
9: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए। हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
8: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
10: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसेस बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट से सबने सरेंडर किया है और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफ़र कर सकते हैं।
8: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो

0: उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
1: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं। 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण FTA है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट EU ने साइन किया है। अब इस FTA के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड है EU के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और FDIs में इजाफा, तो इससे ओवरऑल GDP में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप UAE के साथ ही अपने FTA को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी FTA को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से GCC के देशों के साथ भी हमारा FTA लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, एक उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति

0: जेयर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने GDP ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिश

0: इस तरीके वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहाँ पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफ़ी ढीलपना आ गया, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफ़ी बार सफल हुए। मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफ़ी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजोल तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफ़ी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुँच रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कई जिलों में जहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहाँ पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
0: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहाँ से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
0: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, अब वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके

0: माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बनके जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतरराष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सब के बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रप्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है, जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु, आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। Yeah.

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद को लेकर मैं हाजिर हूँ निशा। कार्यक्रम आपकी पसंद के लिए हमें खत मिला है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया का, जमशेदपुर से। सरायकेला पाड़ापुर पहाड़पुर गांव से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरमणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती डोबरो, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और शिवा मुंडरी का। इन सबों के पसंद पर सुनते हैं फिल्म कोहिनूर का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो को। फिल्म का नाम था ढाई अक्षर प्रेम का, और इस गाने को सुनना चाहा था कार्यक्रम आपकी पसंद में सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक, आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। और अब श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद के अगले फरमाइश करता है बेड्डी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बासिरे। इन सबों के फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर मेना बोले नवा नुकन परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा को गांव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
5: उत्तम बुरंग सिंह तमसाय अनिता तमसाय भूरूपा सेना कना ऐसे दुकुरे में ना ये वापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिता
6: अन्य हम तुम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में पुरुषों ने बागिया तोड़ के ये दुनिया से यार सी कोलो पुलिस कोलो इन्हीं लड़ाई चलाओ तमो दुर्गम कोई यहाँ तो जाए तेरे काका भी वो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते सेशन का है वो आगे बिठा हुरा इनका अली आया नु तुम तेरी ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण

0: निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: और इस अपील के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त होता है।

और अब श्रोताओं, आप सबों के खतों के सिलसिले को जारी रखते हुए सुनवा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए श्रोताओं, हमें न्यू कॉलोनी निमडी से खत मिला है। ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीस और मुन्ना का। खरसवां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और एस देहुरी का। इन सबों के फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

और अब कार्यक्रम रजनीगंधा के लिए हमें अगला खत मिला है लच्छनपुर से जीवनलाल रजक रामजी साहू का, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान, भटगांव बलौदा बाजार से रामदुलार साहू और नीलिमा साहू का, अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता फुलवंती गुप्ता शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू का, इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया फिल्म दिल का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी कार्यक्रम रजनीगंधा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सबों का फिर से स्वागत है। और खत लिखने वाले हैं चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। और कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष और आनंद। इचाहतु से गोलाराम लोवादा, लुद्री लोवादा, सुरति लोवादा, सोमनाथ लोवादा, पूर्णिमा, लालमुनि लोवादा और विंजना लोवादा। इन सबों के फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म कशिश का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, आर डी बर्मन के धुन पर।

और अब श्रोताओं, हमें अगला खत मिला है बड़ा बाम्बो सुपाई साई से। देवेंद्र तांती, प्रकाश तांती, निशा तांती, राकेश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, सुशांत सिंह देव, सुदर्शन प्रमाणिक, ईश्वर बानरा, ललित बाबू और देवेन बाबू का, पोंडाकाटा नरसिंह महली, पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी, संजय सोरेन, नंदनी महली, संजीव महली, विजय बेसरा और एनएस महली का। इन सबों के फरमाइश पर सुनवा रहे हैं अलका याग्निक का गाया ये गीत फिल्म आरजू से।

0: श्रोताओं, आइए आपको एक सूचना दे दें। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के प्रभावित गृह रक्षकों को सूचित किया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला अंतर्गत मुहर्रम पर्व ड्यूटी 2026 के अवसर पर दिनांक 25/6/2026 से 28/6/2026 तक कुल 4 दिनों के लिए विधि व्यवस्था संधारण हेतु 300 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जानी है। अतः वैसे सभी गृह रक्षक जो वर्तमान अवधि में किसी भी प्रकार के कर्तव्य में प्रतिनियुक्त नहीं है, वे सभी गृह रक्षक जिला समादेष्टा कार्यालय चाईबासा में आकर दिनांक 18/6/2026 से मुहर्रम पर्व हेतु अपना आगमन कराना सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: ਸੇਨਾ ਸਵਯਮ ਹੀ ਘਟ ਪੜੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸੇਨਾ।
1: और श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम के अंत में फरमाइश करने वाले हैं बड़ा निमड़ी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार, महुलडिहा, सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो और सोनवा से ही गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, आयुष महतो और गीतेश महतो, इन सबों के फरमाइश पर सुनते हैं बाबुल सुप्रियो और साथियों का गाया, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है का ये गीत।
2: सुनिए, आज हमारे जीत का दिन है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास, और हमारे साथ वो सितारे।
3: लेकिन तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालना चाहते हो? क्यों?
2: क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा

0: पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: दिस इज द कंट्री। यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन

के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रोकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आजादी समेत दीगर बुनियादी हुकूक शामिल हैं। से में मुआवजे के केस में सामने आया है जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साला बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अगर मुल्क की तामीर तरक्की की बात की जाए तो शुमाल एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकेबंदी और नजरअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वजीर आजम ने 83 मरतबा से ज्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से सियाहत को फरोग मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौके बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए ईटानगर के देरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एमक्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से
1: आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में शुमाल मशरक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अख़वाया मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही राष्ट्र के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कही। उन्होंने ये बातें उस वक्त कही जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने अक़वामे मुत्तहदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और OIC के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्द में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्जामात को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 110.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं सुनते हैं गजनों का कार्यक्रम। पेश है अबिदा परवीन की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे गजनों के कार्यक्रम में अबिदा प्रवीण को। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरों के रंग। तो श्रोताओं, सबसे पहले सुनवा रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत, आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में, मोहम्मद रफी का गाया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है हसरत जयपुरी का लिखा, शंकर जयकिशन के धुन पर लता मंगेशकर और मुकेश का गाया। फिल्म का नाम है बरसात।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से सुरों के रंग का ये कार्यक्रम। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक सपेरा एक लुटेरा से, मोहम्मद रफ़ी का गाया, असद भोपाली का लिखा, उषा खन्ना के धुन पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है दिल दिया दर्द लिया।

शकील बदावनी की रचना है और नौशाद का धुन। सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।